श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर।

सबसे महत्वपूर्ण और उज्जवल पहलू वही है जो सत्य प्रेम भक्ति वाला है, जो नेकी नम्रता विशालता सहनशीलता करुणा दया और मानवता वाला है। इंसान तूने चयन करना है कि प्रेरणा किससे लेनी है, अपने मन को दिशा कौन सी देनी है, तूने मन को विष से भरना है या अमृत से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं मिसेज आरती कुमार। प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।
3: नमस्कार अंबाला, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं आपकी रेडियो सखी सेजल आपका स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम घर परिवार में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और सभी व्यस्त हैं अपने घरों की साफ सफाई में, तो आज इसी टॉपिक पर हम आपके लिए लेकर आए हैं घर परिवार का नया एपिसोड और इसमें हम बात करेंगे साफ सफाई से जुड़े मुद्दों के बारे में और आप अपने घर को किस तरीके से और सुंदर बना सकते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एक खास मेहमान, मिसेज आरती कुमार।

0: जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, यानी कि शिक्षा विद्वान, और यह एक प्रधानाचार्य भी रह चुकी हैं। यह बहुत अच्छी कुक भी हैं, साथ ही कुकिंग क्लासेस भी लेती हैं, और गायिका तो ये बहुत बेहतरीन है ही। सो वेलकम मैम।
1: थैंक यू सेजल, आई एम रियली सो प्लीज बीइंग हियर। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस रेडियो स्टेशन पे आकर कि मैं उस बच्चे को इंटरव्यू अपना दे रही हूँ जिसे मैंने खुद पढ़ाया है। आई लव यू बच्चे। थैंक यू
0: सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपका ही थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ
1: आपके सामने।
0: और मैम, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक टीचर हैं और आपने हमें बचपन में यही सिखाया कि अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, अपने आप को क्लीन कैसे रखें, साफ सफाई कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो यही पूछना चाहूंगी कि आपके घर में इस चीज को लेकर क्या माहौल रहा है।
1: बेटा ऐसे है कि साफ सफाई की तो मैं भी बहुत ही कायल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें खुद को भी साफ रखना चाहिए, अपने आसपास सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए, पूरे वातावरण साफ रखना चाहिए। और इस वजह से लाइक बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई लव टू टीच पीपल टू कीप देयर सराउंडिंग्स, एंड इसके अलावा खुद को भी हमेशा साफ रखो, हाइजीनिकली साफ रखो। जब हम खुद साफ रहते हैं तो हमारा सारा दिन अच्छा रहता है और हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहते हैं।
0: जी मैम, एक ना नई अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, हम खुद भी अच्छे से तैयार हुए होते हैं, वेल मेंटेन्ड एंड वेल ड्रेस्ड होते हैं। तो अब आज का टॉपिक हमारा इसी पर है, साफ सफाई पर। तो जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, त्योहार आने वाले हैं, तो लोग अपने घरों की सफाई करना शुरू कर चुके हैं। तो एक गृहिणी के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी किचन, यानी कि रसोई। तो आपके मुताबिक उस रसोई को, उस किचन को कैसे सजाया या साफ किया जा सकता है?
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि दिवाली आ रही है, सब लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले हम किचन से शुरू कर लेते हैं कि चलो हमारी रसोई का जहाँ पर शुद्ध खाना बनता है उस जगह को तो साफ करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे होता है कि अगर आपने रसोई में इस्तेमाल करने वाले डब्बों को अगर साफ करना शुरू किया तो उसके लिए खासकर एक ये होता है कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो ज्यादातर गंदे हुए होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, तो हम ज्यादातर कई लोग ज्यादातर उसे फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें भी साफ करा जा सकता है और नया बनाया जा सकता है।
0: वो कैसे मैम?
1: ऐसे है, प्लास्टिक के डिब्बे के लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी ले लें, उसमें आप 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा व 1 नींबू का रस मिलाकर घोल बना लें, फिर इसमें प्लास्टिक के डिब्बे डाल दें, 15-20 मिनट बाद उन्हें निकालें और स्पॉन्ज से साफ कर लें। इससे जिद्दी दाग के साथ साथ बदबू को भी राहत मिल जाएगी।
0: अगर मैम डब्बे स्टील के या एल्युमिनियम के हों तो उन्हें कैसे साफ करें?
1: बेटा उसका भी बहुत अच्छा प्रोविजन है मेरे पास।
0: क्या मैम?
1: अगर स्टील के डिब्बे की बात करें तो आप बेकिंग सोडा को और पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को डिब्बों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, बाद में लिक्विड सोप और पानी से धोकर तुरंत एक सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लें। और हाँ, एल्युमिनियम के डब्बों के भी बारे में बता देती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: एल्युमिनियम के डब्बों के लिए बेस्ट है कि 2 नींबू का रस निकालें और उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक मिला दें। इस पाउडर को कंटेनर में डालें और स्क्रबर की मदद से रगड़कर गुनगुने पानी से धो लें। इससे रसोई में लगे डब्बे एकदम नई सी चमक देंगे।
0: जी मैम, डब्बे तो चमका दिए बिल्कुल हमने किचन के, लेकिन एक और चीज है कि जब हम कभी ना किचन की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो डब्बों में हमें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं जो कि खराब हो जाती है, जनरली हम भूल जाते हैं रख के, तो उन्हें हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं?
1: अगर दाल या अनाज वगैरह प्रिजर्व करना हो आपने, तो पहले तो थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों में लेकर ना उसको मले, दाल पर रगड़े, ठीक है, और फिर उसे थोड़े थोड़े दाल व अनाज पर मल दें और थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दें। एक और आसान तरीका भी होता है कि आप दालों व चावल के डिब्बे में एक एक तेज पत्ता रख दें, इससे कभी जाले नहीं लगेंगे दालों में। या फिर एक और बात बताऊं, जो अखबार हम पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल भी प्रिजर्वेशन में हो सकता है। अखबार के कागज की स्याही की गंध कीड़े पास नहीं आने देती है।
0: जी मैम, आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई। एक टेक्निक मेरे दिमाग में भी आ रही है, एक टिप मेरे मम्मा ने भी मुझे बताया था कि अगर हम दाल, मैदा या सूजी हमारे घर पर है तो उसे अगर हम फ्रीजर में रख दें तो वहां पर भी वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहती है। और जैसे आपने बताया कि नीम की पत्तियां भी हम यूज कर सकते हैं, पारे की गोलियां भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है अपने खाने को प्रिजर्व करने का। और जो खाने के शौकीन है उनके लिए ये टिप तो बहुत ही बाकमाल रहेगी। मैम, अभी खाना प्रिजर्व करने की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ खाना बनाने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी तेल के या घी के छींटे जो हैं स्लैब्स पर या बर्तनों पर पड़ जाते हैं, तो वो दाग से बन जाते हैं, तो उन्हें कैसे हम क्लीन कर सकते हैं?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, इसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगी कि तेल के दाग कैसे हटाए जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गृहिणियों के लिए, और इसको साफ करते करते काफी वक्त लगता है, तो ज्यादा वक्त ना लगे इसलिए आपको एक उपाय बताती हूँ। 2-3 कप कोला और 2-3 चम्मच डिश वॉश लिक्विड मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए, ठीक है? फिर इसे स्प्रे बोतल में भरें, जिस दीवार पर चिकनाई के दाग हो वहां स्प्रे कर लें, थोड़ी देर बाद स्पंज से साफ करके पोंछ लें, चकाचक साफ हो जाएगा।
0: और मैम, साथ ही ये तो हम कर लेंगे आपके टिप्स से, लेकिन जहाँ कांच पर और स्पेशली नलके जो होते हैं, टैप्स होते हैं हमारे घर के, उनके ऊपर दाग जम जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से साफ होते हैं, तो उसके लिए कोई इजी टिप हो सकता है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, मैं नलके के बारे में बताती हूँ कि जैसे आपने कोई कांच का बाउल ले लिया, प्लास्टिक का ना ले, कांच का बाउल ले लिया, और उसके अंदर में आपने थोड़ा सा सफेद सिरका डाला, थोड़ा सा आप एक ढक्कन डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें आपने पेस्ट डालना है, जो हम पेस्ट करते हैं टूथपेस्ट डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए किसी भी एक पुराने टूथब्रश से, मिक्स करके, और उसको जब आप नलकों पर लगाएंगे, और जिस 2 मिनट वो साथ साथ सूखने लग जाएगा, 2 मिनट बाद आप उसको कपड़े से पोछेंगे, सारे नलकों के दाग एकदम व्हाइट हो जाएंगे, एकदम सब सफेद, सब ठीक हो जाएगा, स्टील का स्टील आपको चमक जाएगा जैसे अभी नया नलका लगाया हो, यू नो।
0: जी मैम, ये तो बहुत बढ़िया टिप।
1: और हाँ बच्चे, आप कांच की भी बारे में पूछ रहे थे,
0: कांच के बारे में भी,
1: तो कांच का ऐसे है बेटा कि सफेद सिरके व कोला को बराबर मात्रा में ले लो, ठीक है, फिर इस घोल को स्प्रे बोतल में भर लो और अच्छी तरह हिलाकर खिड़की के कांच या आईने पर स्प्रे करें, फिर 4-5 मिनट ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से साफ कर दें, बस सब कुछ क्लीन।
0: जी मैम, इसके साथ साथ घर के शीशे भी एकदम नए हो जाएंगे,
1: नए हो जाएंगे,
0: हमारे टैप्स भी नए हो जाएंगे, और जो तेल के छींटे हमें परेशान करते हैं उसको भी आपने झट से हमारे स्लैब से दूर कर दिया।
1: थैंक यू।
0: आगे और आपको टिप्स बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैम की मधुर आवाज में हम एक गाना सुनना चाहेंगे।
1: जरूर, मैं मुखड़े के स्टार्टिंग के बोल बोल देती हूँ, फिर आप ये गाना चला दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल।

0: था बहुत ही खूबसूरत। अब साफ सफाई के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन घर की साफ सफाई के साथ साथ बाहरी साफ सफाई के साथ साथ अंदरूनी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है तन और मन की सफाई। घर की सफाई में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से ज्यादा थकान महसूस होती है। और अब मैम यही चीज मैं पूछना चाहूंगी कि गृहिणियां अब इस चीज का किस तरीके से ध्यान रख सकती हैं।
1: ये आपने बहुत सही कहा है कि गृहिणियां जो हैं वो बेचारी काम कर करके सिर्फ घर का, बच्चों का, पति का, सबके काम करने में इतनी उलझ जाती हैं कि वो खुद का नाश्ता खाने को भी उनके पास वक्त नहीं बचता है और वो करना ही भूल जाती हैं। तो इसलिए सारा दिन जिससे हमें ताकत मिलती है वही चीज वो भूल जाती हैं। और इसलिए सुबह लाइट और पौष्टिक आहार ले लेना चाहिए वक्त रहते, जैसे उपमा, पोहा या ओट्स, या भीगे हुए काले चनों को छोंक कर भी खा सकते हैं। इतना तो औरतों को याद रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें और फिर काम पे लगे।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, एक और बात, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तली हुई चीजें ना सुबेरे के वक्त खाएं, पकौड़े वगैरह, सैंडविच या बहुत भारी भरकम तले वाले नाश्ते से खुद को बचाए रखना चाहिए।
0: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाश्ता जो है हमें पूरे दिन काम करने की एनर्जी देता है, हमारे अंदर जान डालता है, और इसके साथ साथ हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है। इसीलिए आप जब भी काम कर रहे हो तो अपने पास पानी या नींबू पानी जरूर रखें, या फल और सब्जियों का जूस भी रख सकते हैं, जो ताकत भी देगा और थकान से होने वाले सिर दर्द से भी बचाएगा।
1: हाँ, पानी तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब काम कर रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक भी लेना जरूरी है। सिर्फ पानी पीकर नहीं गुजारा होगा, है ना। काम करते करते बीच में कुछ न कुछ खाते रहें, जैसे भुने मखाने, बादाम आदि, जिससे ऊर्जा बनी रहे।
0: हाँ, एनर्जी के बिना तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमें घर में क्रॉस वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि धूल बाहर जाए और ताजी हवा अंदर आए। इसीलिए घर की एक आध खिड़की खुली रखें। और एक और जरूरी बात, जब हम सफाई कर लेते हैं तो बॉडी पर बहुत ही इरिटेशन महसूस होती है, तो इसके लिए सफाई के बाद नहाते वक्त गुनगुने पानी में फटकरी और नमक मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैम, इस पर आपका क्या विचार है?
1: जैसे मैंने आपको आगे भी कहा था कि आसपास की सफाई के अलावा खुद की हाइजीन की भी हमें बहुत जरूरत है कि हम खुद को कैसे साफ रख सके। खुद को ठीक रखने के लिए, साफ रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चाहे तो थोड़े पानी में नीम की पत्तियां डालकर उबाल लें व उस पानी को बाल्टी के पानी में मिलाकर उससे नहाएं। इससे त्वचा के संक्रमण का जोखिम कम होगा और थकावट से भी आराम मिलेगा। और एक और बात, जैसे कई बच्चों को पिंपल्स निकल रहे होती हैं, है ना, तो उनकी स्किन में जो ट्रबल हो रहा होता है वो भी अगर नीम के पानी से इस तरह से नहाएंगे तो उनकी त्वचा और निखरेगी और ये सब मुसीबतों से भी वो छुटकारा पा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जैसे मैम, अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, साथ साथ हम सफाई में भी लगे हुए हैं, तो धूल की वजह से ना कहीं स्किन बहुत ड्राई हो जाती है।
1: यस।
0: अब इसके लिए आप नहाने के बाद मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल है वो
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि धूल मिट्टी से हमारे हाथ करकरे से हो जाते हैं, हमारा स्किन बहुत ड्राई और ऐसे कहीं कहीं कट्स भी आते हैं कुछ लोगों के, मैंने देखा है। तो इट इज बेस्ट कि आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें नहाने के बाद।
0: और साथ ही जब हम सफाई कर रहे हो तो उससे पहले अगर हम ऑयल यूज कर लें अपने हाथों पर, फेस पर हल्का सा यूज कर लें, और बालों पर भी लगा लें, तो जो धूल है हमारे बालों में नहीं जमेगी, हमारे स्किन पर नहीं ठहरेगी, जिससे इरिटेशन बहुत ही कम होगी, है ना।
1: बहुत सही कह रहे हैं आप। यस
0: मैम, अब एक और जैसे छोटी सी दिक्कत है जिसकी एक टिप आपसे पूछना चाहूंगी कि साफ सफाई करते टाइम ना हमारे बाल बहुत रफ हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से, और झड़ने भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है या टिप है आपके पास?
1: बिकॉज वो मैं खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया है कि बहुत ही आसान तरीका है, और आप हफ्ते में एक बार अगर करो ना तो चाहे धूल मिट्टी लग रही हो तब या चाहे बगैर उसके भी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे बेटा, और बहुत पौष्टिक हो जाएंगे आपके बाल। उसके लिए क्या करना है, रात को आप पहले अपने तेल लगा लीजिए, अच्छे से मालिश कर लीजिए सिर में, फाइन। और उसके बाद सुबह एक कटोरी में आप एक अंडा फेंट लीजिए और उसके अंदर एक नींबू का जूस भी मिक्स करना है। बस ये दो आइटम्स अच्छे से इनको मिक्स करके और आप अपने बालों की चीर खोल खोल के आराम से वो सारा कुछ सोल्यूशन सिर पे लगाइए और थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए। बाल बांध लीजिए, एक घंटा कोई और काम कर लीजिए, उसको सूखने दीजिए। जब आपके बाल सूख जाएंगे और फिर आपने उसको कोसे पानी से धोना है, ठीक है। आप अच्छे से नहा लीजिए और वो सारा साफ हो जाएगा, वहीं उसमें चमक आने लग जाएगी। आपको उस दिन किसी शैम्पू या कंडीशनर की जरूरत नहीं होगी। और इसके आगे आपने क्या करना है कि फॉर प्रॉपर कंडीशनिंग एंड फॉर प्रॉपर लेंथ एंड फॉर एवरीथिंग द गुड हाइजीन ऑफ योर हेयर, उसके लिए आपने क्या करना है कि बाल्टी में थोड़ा गर्म पानी डाल के और उसमें आप अपना टॉवल डिप कर दीजिए, फिर उसको निचोड़ के वो स्टीम वाले उस टॉवल से अपने पूरे बाल लपेट लीजिए और थोड़ी देर और कुछ करते रहिए। उसके बाद जब आप अपने बाल खोलेंगे तो आप नया ही रूप देखेंगे उन बालों का, वो बड़े स्ट्रेंथ वाले हो जाएंगे और उसके अंदर में लस्टर आ जाएगा, चमक आ जाएगी। लोग कहेंगे वाह आज किस शैम्पू से नहाए हो आप,
0: बिल्कुल ब्यूटी पार्लर स्पा वाला लुक।
1: यस।
0: और जो लोग एग यूज नहीं करते हैं उनके लिए, मैं अभी आपने जब बताया ना कंडीशनर का, तो मुझे एक टिप याद आया कि जो हम चावल होते हैं, चावलों का जो पानी एक्स्ट्रा स्टार्च
1: निकलता है,
0: उसके अंदर हम शैम्पू डालकर अगर वो अपने सिर पर लगाएं नहाते टाइम, तो वो भी एक कंडीशनिंग का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे बाल उससे बहुत स्मूथ हो जाते हैं उसे यूज करने के बाद।
1: उसे भी सुखाते होंगे थोड़ी देर, है ना, लगाकर।
0: उसको लगाकर आप लाइक शैम्पू यूज कर रहे हैं तो साथ साथ ही वो आप वॉश कर सकते हैं, तो एक इंस्टेंट आपको सोल्यूशन उस टाइम मिल जाएगा अगर आपको कंडीशनिंग चाहिए।
1: बहुत बढ़िया टिप दिया आपने।
0: जी। और मैम जैसे अभी हम किचन की बात कर चुके हैं, अंदरूनी सफाई की बात कर चुके हैं, अपनी बॉडी केयर के बारे में बात कर चुके हैं, अब थोड़ा हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। ड्राइंग रूम में जैसे हमारे सोफा होते हैं, डाइनिंग सेट होता है, तो सोफे जैसे जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे साफ कर सकते हैं अगर लेदर या कोई कपड़े के सोफे अगर हमारे पास हो तो?
1: इसका भी इलाज है, अभी मेरे दिमाग में सब कुछ याद है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे साफ करते हैं। कि जैसे अब हमारा तो लेदर का सोफा है, तो उसके लिए हम कपड़े से ही साफ करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आधा कप ओलिव ऑयल में आपने एक चौथाई कप विनेगर डाल देना है, ठीक है। व्हाइट विनेगर जो होता है सभी के घर में सिर का, वो डाल दीजिएगा आप एक चौथाई कप, और उसको अच्छे से मिलाकर एक बोतल में भर लो और फिर उसको आप छिड़क लीजिए पूरे सोफों के ऊपर में, और फिर एक मुलायम से सूती कपड़े के साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ ही उसको आप अच्छे से रगड़िए, सारे दाग धब्बे छूट जाएंगे और लेदर एकदम चमक उठेगा, ऐसे लगेगा अभी खरीदे ये सोफे।
0: जी बिल्कुल, न्यू लुक आएगा दिवाली पे, वैसे भी न्यू लुक घर का बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और एड ऑन करना चाहें या कुछ सोफे जो अलग ढंग के जो लेदर के नहीं है जिनके घर पे सोफे, उनके लिए अगर कोई टिप अगर आप हो जाए
1: उसके लिए भी है, जो कपड़े वाले होते हैं, है ना सोफे। जी। तो उसके लिए तो ये है कि कई बार जैसे मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है और कभी उनके उनसे कुछ गिर जाता है सोफे पर, कोका को लगे या कुछ भी गिर गया हो, तो हम क्या करते हैं कि एक कटोरी में थोड़ा सा सर्फ मिक्स करते हैं, उसका झाग बनाकर और उसको कपड़े में डिप करके उस दाग को पहले उससे मिटाने की करते हैं, थोड़ी देर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद एक और साफ कपड़े से साफ पानी में डिप करके उसके ऊपर रगड़ते हैं, तो वो सोफा भी साफ हो जाता है।
0: वाओ, ये तो हमने मतलब आपको अगर न्यू लुक चाहिए अपने घर में, अपने डाइनिंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में, किचन में, तो आप इन टिप्स को यूज कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं टिप्स आपको कैसे लगे। और बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मैम को भी अपनी आवाज को थोड़ा आराम देना है और हमें भी। लेकिन लेकिन लेकिन जैसे कि मैंने बताया वो बहुत ही अच्छी गायिका है, तो ब्रेक पर जाने से पहले उनकी मधुर आवाज में एक गीत हो जाए।
1: जरूर, मैं एक छोटा सा मुखड़ा गाती हूँ, फिर आप ये गाना जरूर सुना दीजिएगा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और कार्यक्रम है घर परिवार। अब आ चुके हैं हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और आपको पता है जब आप सॉन्ग ब्रेक पर थे ना, तब यहाँ पर मौजूद मिसेस आरती हमें बता रहे थे कि किस तरीके से हम रूम फ्रेशनर्स बाजारी नहीं घर पे ही कैसे बना सकते हैं और कैसे घर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो मैम, मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं के साथ भी जो टिप्स आपने मुझे बताए वो इन्हें भी ज़रूर बताएं।
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो सबको पता चलना चाहिए। अब देखिए, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फल घर में आ रहे होते हैं, जिनमें संतरे भी होते हैं और संतरे हमें बहुत पसंद होते हैं, लेकिन हम खाते हैं मगर अक्सर हम छिलके फेंक देते हैं।
0: जी मैम।
1: लेकिन हम इन्हें भी उपयोग में ला सकते हैं, क्या ये पता था आपको?
0: नहीं, वो कैसे?
1: पता क्या करना है, एक पैन में आप 2 कप पानी ले लीजिए, 3-4 संतरे के स्लाइसेस, उनके छिलके, 5-6 नींबू के स्लाइसेस व नींबू, 10-12 लौंग भी डाल दो, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े डालकर इस पानी को आप उबालिए, और इसको इतना उबालिए कि ये हाफ हो जाए, आधा हो जाए। जब ये पानी उबलकर आधा हो जाए तो इसे स्प्रे बॉटल में डालकर सारे कमरों में छिड़क दें। और हाँ, कपूर सिर्फ पूजा में ही काम नहीं आते, बल्कि इनका भी रूम फ्रेशनर बन सकता है।
0: इनका, कपूर का रूम फ्रेशनर?
1: जी।
0: वो कैसे मैम?
1: वो ऐसे कि कपूर की 6-7 गोलियों को बारीक पीस लें, इसे स्प्रे बोतल में डालें, इसमें डालें कुछ बूंदे गुलाब जल की, और बोतल की क्षमता अनुसार पानी भी भर लें। बोतल को बंद करके अच्छी तरह से हिलाएं और अपना घर खुशबू से महकाएं।
0: जैसे कि आपने बहुत ही कमाल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं हमारे श्रोताओं को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी ये बहुत पसंद आए होंगे, और ये काफी किफायती और बचत वाले भी हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हमारा काफी खर्चा होता है बाहर से चीजें लाने में, घर की डेकोरेशन में। तो इन टिप्स ट्रिक्स से आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और घर को सजा भी पाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप यहाँ आए और हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू हुए। अब मैं इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपको मीठे मीठे सुरीले गीत हम बीच बीच में सुना रहे थे, तो अभी भी जाते जाते मैम के एक गीत के साथ छोड़े चले जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए ये भी हमें बताएं, और ये बताने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। अब हमें दीजिए इजाज़त, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: तो मुझे ये गाना अनाड़ी पिक्चर का बहुत पसंद है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। एडिटिंग व रिकॉर्डिंग किया दीपक कश्यप ने। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता की पेशकश।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो हमें सिखलाती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक

भी मिल जाता है। गांव में दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया और दर्जी को कहा गया कि उन्हें राजा के शाही कुर्ते को बटन लगाना है। तो वो दर्जी महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन को लगा सकते हैं? दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता, ये तो बहुत छोटा सा काम है राजा जी, इसके लिए मैं कोई रकम आपसे वसूल नहीं कर सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे मुझे वो मंजूर है। राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए अपनी इज्जत को और बढ़ाने के लिए उसने आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दिए जाएं। दर्जी ने सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा सा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वयं रचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिवानी और लेके आई हूं आपके लिए एक कहानी। कहानी का शीर्षक है हाथ और साथ। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पति देव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है, सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था, वह भी बीमारी के भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता नहीं चलेगा। आपकी अर्धांगिनी हूँ, जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हाल में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी पोंछ नहीं सकती। आप अकेले में जब रोते हैं तो छुपकर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी भी हमें किस मोड़ पे ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूँ मैं, आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद मैं अब एक दो दिन की मेहमान हूँ, शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है कि आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना, जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है, हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ। मगर आप हिम्मत मत हारना, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी ही लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूँ, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, बुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूँगी, टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं न रहूंगी, अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की चिंताओं से मुक्त थे, दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि अब आपको मनाने के लिए आपकी पत्नी नहीं रहेगी। आप टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफर में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? ऐ जिंदगी, अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ।

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा दुआओं में हाथ।

मेरा अतीत मेरी माजी के वो पल जिसमें मैं मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, हंसता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

0: मुझे मेरा बचपन, मुझे मेरा अतीत, मेरा बीता कल।
1: पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको।

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं? टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

नजर खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल हर पल मिटते रहे बेवजह।

यहाँ के मखमली मौसमों की धूप और गुलाबी ठंड हो। हुस्न दिलकशी का हर जुज तुम्हारे दामन में पनाह लिए हुए अभी भी जाविदा है, जिंदा है, जमा है। यकीनन खूबसूरत हो तुम, सिर्फ तुम। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम हवाएं तुम्हें छू कर गुजरे और तुम आओ, तुम आओ मेरी भूली बिसरी यादों में शामिल, तुम हो, सिर्फ तुम हो।

भीगती बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

बोलिए, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्ते।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय।

नारी और सम्मान के आज के अंक में आप सबको मेरा नमस्कार। ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं किरणी इस प्रोग्राम में आपके साथ रहूंगी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। उस समय वहाँ मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अपनी जॉब में समय को कम करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। इसके साथ ही उन महिलाओं ने अपने वेतन बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की भी मांग की थी। इसके एक वर्ष बाद अमेरिका में इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया गया। इसके बाद साल 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया। इस सम्मेलन में 17 देशों के करीब 100 कामकाजी महिलाएं प्रेजेंट रही। इन सभी महिलाओं ने क्लारा जेटकिन के सुझाव का समर्थन किया। इसके बाद साल 1911 में सर्वप्रथम 19 मार्च के दिन कई देशों में ये दिन एक साथ मनाया गया। इस तरह से ये फर्स्ट वुमेन्स डे था, परंतु अब तक इसे मनाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था। इसके बाद 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस की महिलाओं ने तंग आकर खाना और शांति के लिए विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध इतना संगठित था कि सम्राट निकोस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके बाद यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। रूसी महिलाओं ने जिस दिन इस हड़ताल की शुरुआत की थी वो दिन 28 फरवरी था और गगेरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च था। तब ही से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। ये चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं महिलाओं को समर्पित कैलाश खेर की आवाज में ये गीत।

आप सबका फिर से स्वागत है प्रोग्राम नारी और सम्मान में। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मान्यता कई वर्षों बाद 1975 में मिली। इसी वर्ष से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक थीम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी सबसे पहली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के उद्देश्य समय के साथ और महिलाओं की समाज में पोजीशन बदलने के साथ चेंजेस आ रहे हैं। शुरुआत में जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अब समय चेंजेस के साथ इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। महिला दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिला और पुरुषों में समानता बनाए रखना है। आज भी दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां महिलाओं को समानता का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नौकरी में जहां महिलाओं को पदोन्नत में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वही रोजगार के क्षेत्र में महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई है। कई देशों में अब भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी अब भी देखे जा सकते हैं। महिला दिवस मनाने के एक उद्देश्य लोगों को इस संबंध में जागरूक करना भी है। महिलाओं का आर्थिक स्तर भी पिछड़ा हुआ है। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर उन्हें भविष्य में प्रगति के लिए तैयार करना भी है। ये चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम नारी और सम्मान में। साल 2019 में ये 108वां महिला दिवस था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ये दिन पूरे विश्व में एक साथ 8 मार्च 2019 को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया गया। साल 1996 से लगातार महिला दिवस किसी थीम के साथ ही मनाया जाता आ रहा है। सबसे पहले 1996 में इसकी थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर थी। इसके बाद लगातार हर साल एक नई थीम और नए उद्देश्य के साथ इसे कई देश एक साथ मनाते आ रहे हैं। जैसे कि 2013 में इसकी थीम महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई के समय को निश्चित करने की मांग की गई थी। 2015 में महिलाओं की तरक्की से समस्त मानव जाति की तरक्की को जोड़ा गया था। 2018 की थीम महिलाओं को उनके विकास के लिए प्रोत्साहित करना था। साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थिंक इक्वल बिल्ड स्मॉल इनोवेट फॉर चेंज है। इस साल इस थीम का उद्देश्य नई सोच के साथ लैंगिक समानता और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा इस वर्ष महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनकी प्रेजेंस में ध्यान दिया जाएगा। भारत में इस दिन कई संस्थानों द्वारा नारी को सम्मान देकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। भले ही हर देश में इस दिन को मनाने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु सब जगह इसका उद्देश्य एक ही है, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, तब तक आप एक प्यारा सा गीत सुनिए।

0: हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्तों की शान हो, हर युग में पूजित हो, पांच दिवस दूषित हो, जीवन को अंकुर दे, माँ बनकर उर्जित हो, घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम के सान्निध्य में खुशी का इरादा हो, रंग भरी होली हो, फुग नई टोली हो, प्रेम रस पगी सी कोयल की बोली हो, मन की अनुबंध हो, प्रेम का प्रबंध हो, जीवन को परिभाषित करता निबंध हो, नारी सम्मान है स्वर्ग का द्वार, उसका अपमान है नरक समान। आने वाले साल में भी इस दिन को हर देश मनाएगा, परंतु इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण कम होंगे, जब महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामले शून्य होंगे, जब महिला पुरुष को समान दर्जा मिलेगा। काश हम वो दिन जल्द ही देख पाए जब महिलाओं की लैंगिक समानता के साथ उसके हर क्षेत्र में समान दर्जा उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नारी और समान का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान, हम सफर जिंदगी का।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहस, तो गम क्या सर कटने का। ना होता घर जुदा तन से, तो जानू पर दरा होता। हुई मुद्दत के गालिब, मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब, मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आज लेके आया हूं देश प्रेम से भरा एक और अंक प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना का। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा देश प्रेम की बात करते हैं, उन वीरों की बात करते हैं, उन जवानों की बात करते हैं जिनसे हमारा देश हमेशा सुरक्षित है। वो सीमा के रखवाली करते हैं, वो सीमा के प्रहरी हैं, वो वहां पर अपने घरों से अपने बच्चों से दूर रह के सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। आज का ये प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना समर्पित है हमारे वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। आज हम बात करेंगे अभिनंदन वर्तमान की।

एक ऐसे योद्धा जो अपने देश में शेर है ही है और उसने दुश्मन देश के अंदर भी अपना सिर ऊंचा रख के देश का सिर ऊंचा कर दिया। हम सब भारतीयों का गर्व से सिर ऊंचा है। विंग कमांडर अभिनंदन 36 साल के हैं। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से स्नातक। भारत के तमिलनाडु से अभिनंदन, उनकी मूल जड़े थिरुपनामुर गांव से है। उनके माता पिता चेन्नई में रहते हैं। भारतीय वायुसेना में उन्हें 2004 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में चुना गया। उन्हें अपने 15 साल के करियर में 2 बार पदोन्नत किया गया। पहले उन्हें एक कुशल सुखोई 30 फाइटर पायलट का खिताब मिला। बाद में उनके युद्ध कौशल को देखते हुए उन्हें विंग कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया। उसके बाद उन्हें मिग 21 को सौंप दिया गया। अभिनंदन जाने माने पायलट एयर मार्शल सिंह कुट्टी वर्धमान के बेटे हैं। वो पूर्वी वायु कमान के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभिनंदन बहादुर परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर भी रही है। उनके 2 बच्चे हैं। अभिनंदन की शुरुआत सैनिक कल्याण स्कूल चेन्नई से हुई है। अभिनंदन वर्धमान का जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ। उनके पिताजी का नाम सिमह कुट्टी वर्धमान है और माताजी का नाम शोभा वर्धमान। उन्होंने विवाह तन्वी मारवा से किया है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व बल यानी CRPF के काफिले पर एक फिदायीन हमला हुआ। इसमें 40 सैनिक शहीद हो गए। देश अधीर हो गया था और प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अगले क्रम के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। आइए सुनते हैं एक देश प्रेम से भरा

आप सबका पुनः स्वागत है प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे वीर योद्धा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के लिए। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना पाक अधिकृत कश्मीर गई और आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस हवाई हमले में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करते हुए उसके कारण पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को 27 फरवरी को अगले दिन सबसे घातक लड़ाकू विमान F-16 के साथ भारत भेजा। इसका जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान सामने आए। उन्होंने अपने मिग 21 के साथ बहादुरी दिखाई और दुश्मनों पर प्रहार किए। भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमानों के जवाब में पाकिस्तान द्वारा भेजा गया F-16 गिरा, लेकिन दुर्भाग्य से भारत का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट गायब हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट उनके कब्जे में है। अभिनंदन वर्धमान ने जब अपना पैराशूट इजेक्ट किया तो वह पाक अधिकृत कश्मीर में थे। जब वे वहां उतरे तो हमने कुछ दृश्यों में देखा कि वहां के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें पीटने भी लगे। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के जवान ने अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अभिनंदन के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके चेहरे पर खून था। अभिनंदन पाक आर्मी को अपना परिचय दे रहे थे। भारतीय सरकार ने कहा इस वीडियो के द्वारा पाकिस्तान जेनेवा संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें वे चाय पी रहे हैं और पाक आर्मी के कुछ अधिकारियों के साथ उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जब जवाब देने की बारी आई उन्होंने सिर्फ उतना ही बताया जितना बताना जरूरी था। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस मिशन से आए थे या किस मिशन से आपने अपने विमान को उड़ाया था तो उन्होंने शेर के बांधे ये कहा कि मैं आपको ये नहीं कह सकती। यहां एक बात कहनी बहुत जरूरी है, जब उनको ये ज्ञात हुआ कि वो पाकिस्तान की धरती पर है और लोगों ने उन पे हमला बोल दिया, उन्होंने अपना पिस्तौल निकाला और हवा में फायर किया। किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा करते हुए वो वहां से भागे और भागते भागते वो एक तालाब में कूदे ताकि जो उनके पास जरूरी कागजात है उनको वो पाकिस्तान के हाथ नहीं लगना देना चाहते थे और कुछ कागज ऐसे थे जो वो निगल गए। यहां से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जान से भी बढ़ के रखवाली करनी होती है और हमें गर्व है उस विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पर कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाया। इस योद्धा के बारे में हम और भी जानेंगे, आइए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीतों में।

आप सुन रहे हैं अंबाला की आवाज और ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज हम बात कर रहे हैं हमारे शूरवीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में कहा कि 1 मार्च को भारतीय जवान को रिहा किया जाएगा। 1 मार्च को रात लगभग 9:15 पाकिस्तान सेना ने अभिनंदन को भारतीय सेना को सौंप दिया। उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर की ओर से भारत वापस पहुंचाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक और वीडियो चलाया जिसमें उन्होंने भारतीय मीडिया को बला बुरा कहा था, परंतु उस वीडियो में कुल 20 कट। वायुसेना ने कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि भारत पहुंचते ही अभिनंदन ने कहा, अपने देश आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के घर लौटने पर संपूर्ण देश ने उनका हार्दिक स्वागत किया। पूरा देश उन्हें एक जांबाज सिपाही के रूप में देख रहा है, कोई उनकी तुलना हनुमान से कर रहे हैं और तो कोई उन्हें वायुवीर कहकर अलंकृत कर रहा है। उनके सकुशल घर लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, उनके नेताओं ने भी प्रसन्नता जताई। मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी सेवानिवृत्त ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की घर वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही आतंकवाद के समाधान पर यह संदेश भी दिया, देश में एक वर्ग ऐसा है जो शांति में नोबेल पुरस्कार पाने की होड़ में लगा हुआ है, उसी वजह से वो आतंकियों के सफाया को भी मानव अधिकार हनन करार देता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के संस्थापक बिट्टा ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जिंदा शहीद की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि अभिनंदन ने एक मिसाल कायम की और वे पूरे देश के लिए, विशेषता नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आइए हम चर्चा जारी रखे हुए हैं और अगले हिस्से में हम विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के बारे में और जानेंगे। सुनते हैं देश प्रेम के ये

आप सबका स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम सरफरोशी की तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं उन जवानों की, उन वीरों की, जिन्होंने देश की रक्षा की और जिन्होंने देश का सम्मान रखा, हमारे देश को गौरवान्वित किया। उन वीर जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान और प्राण निछावर कर दिया। हम उन सब वीर जवानों को नमन करते हैं जो इस दुनिया से चले गए, और उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए, अपनी जान देने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। वो अब स्वदेश वापस लौट आए हैं। हम उनको प्रेरणा स्रोत देखते हैं और खास करके युवा पीढ़ी उनसे बहुत खुश है। जैसे शौर्य उन्होंने दुश्मन के पास दिखाया, वो इस समय हमारे देश की जरूरत भी है। आइए एक छोटी सी कविता सुनाती हूं जो देश के प्रेम के प्रति, जो देश का प्रेम दिखाती है। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे बुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया अब है क्या कमी, पर दूर तू है अपने घर से आ लौट चल तू अब दीवाने, जहां कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी कोई एक सदी सारी जिंदगी। तू न पूछ रास्ते में काहे आए हैं इस तरह दो राहे, तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, चाहे तो किस दिशा में जाए। यही जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकार, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। इसी देश प्रेम के साथ मैं इस प्रोग्राम का कर रहा हूं समापन, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि देश प्रेम अपने दिल में जगाइए। इस समय हमारे देश की ये बहुत ज्यादा जरूरत है, हम सबको संगठित करने के लिए। हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने तिरंगे पे गर्व होना चाहिए, और हम उस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। आप सबका समय अच्छा हो, और आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर्स पे बता सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर बता सकते हैं जो रेडियो वितस्ता का है। आप सबका समय शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

राम राम। जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जान

0: जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया। उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा। एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत। इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Hun
4: Radio 90 Aap sun rahe hain Ambala Kent ka pehla community radio FM 90.0 MHz par Radio Vitasta Hamsafar Zindagi ka

0: Hey, Dutch Mail. एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं नेहा धाकड़, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: हम सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मैं थारे ते रूबरू हूँ कार्यक्रम घर परिवार में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप। आज मारे मेहमान है नेहा धाकड़। नेहा जी, थारा स्वागत है FM 90.0 MHz पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे तो ये मौका दिया और मनु यहाँ बुलाया। मेरा नाम नेहा धाकड़ा और हम फतेहपुर गांव में रहा, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने प्लस टू नगला स्कूल, जो मेरे गांव के थोड़ी दूर था, वहां से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी मास कम्युनिकेशन ते गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट ते करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कराया PGDGMC मास कम्युनिकेशन का ही, पंचकूला गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 ते। उसके बाद फिर मैंने PT की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश।
1: तो नेहा जी, आज का हमारा विषय है आज का युवा। जैसा कि आपने बताया कि हम गांव में थे पढ़ने वास्ते बाहर जहाँ थे, जिस तरह आज का युवा पढ़ने वास्ते बाहर जहा, तो उसने किस तरह, कितने साधन आवा या किस तरह जहा आवा?
2: जिस तरह मैंने अपनी सारी स्टडी, जो भी मैंने पढ़ाई करी, वो गांव थे बाहर शहर में का ही करी, तो मतलब आज के टाइम में साधना का बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब साधन है गांव में। जिस तरह पहला एक बस हो, एक राती बस, उसका टाइम था भी 8 बजे आना सवेरी, जिस तरह बच्चे कॉलेज में जहाँ थे, जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो उसके बाद वो 2:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा टाइम था उसका। लेकिन आज के टाइम में गाँव में दो दो बसा लग रही, ऑटो वगैरह, मतलब मैजिक, सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। और आज के टाइम में एक फैसिलिटी हो रहा है कि आज घर घर में साधन है, जैसे मोटरसाइकिल या कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मतलब हर घर में साधन है। आज के टाइम में फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगी बच्चे नू, और जिस तरह बच्चे गाँव में शहर में पढ़ने आवा तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होती।
1: जब लड़के लड़कियां पढ़ने वास्ते दूर जहां, तो उन्हें कुछ मुसीबत का सामना भी करना पड़ा?
2: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी सारी 5 साल स्टडी बाहर ही करी है, गोमत एक शहर में आई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बस वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ। और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि लड़कियों नू ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुश्किल का सामना इस टाइप से करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया कि लड़के लिफ्ट लेकर जा सका, लेकिन लड़कियाँ लिफ्ट लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे भीड़ हुआ बस वहाँ बहुत बहुत, तो फिर जैसे लड़के हुआ वो तो बाहर भी बारी पर भी लटक का चले जहाँ, लेकिन लड़कियां उसमें लटक नहीं सकती। कई बार बसा नहीं मिलती तो उन्होंने बसा के पीछे भागना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन हुआ भीड़ के अंदर जिसमें मैं शायद शब्द में नहीं बयां कर सकती, और उस चीज़ नू सिर्फ वही समझ सका जिसने चीज़ फेस करी हो। क्योंकि मैं जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ी, तो फिर मैं बसा में ही मेरा आना जाना था, तो उस चीज़ नू वही इंसान समझ सका।
1: तो इसका क्या समाधान हो सका?
2: हाँ, लड़कियां नू बहुत ही मुश्किल हुआ जैसे बसा में, तो इसका यही समाधान है कि मतलब लड़कियां वास्ता कोई अलग से बस की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ लड़कियां, लेडीज, औरतें ही ट्रैवल करा, और मतलब जैसे कंडक्टर हुआ बस की, तो मतलब लड़की हो, ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ मतलब किसी टाइप से वो अपने आप नू यू ना महसूस करा भी हाँ हम यहाँ खड़े या कुछ ऐसा। और मतलब इसके लिए कुछ टाइम तक ये सर्विस मिली भी, कुछ बस चलाई गई जिसमें सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर दी जा। और एक सिस्टम हो रहा, मतलब जैसे बस की बारी हुआ, तो मतलब ऐसा सिस्टम कर लें कि जो फर्स्ट वाली बारी उस पर सिर्फ लेडीज ही मतलब चढ़ांगी बस में, जो पिछले वाली बारी उसमें बॉयज या जेंट्स ही चढ़ सका। तो मतलब इस टाइप से कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो हमारी लड़कियां हैं या हमारी औरतें, उन्होंने पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और वो अपनी पढ़ाई नू अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जा।
1: तो जिस तरह आप बस में पढ़ने जहाँ थे, बस में सफर कराते, तो वहाँ आप किस तरह टाइम अपना स्पेंड करे कराते?
2: हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने गांव ते यहाँ बाड़े वास्ता हूँ थी, तो थोड़े टाइम का ही रास्ता हुआ था, उसमें मैं मतलब यही कि सॉन्ग सुन लिए या कुछ जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर मेरे पास सब्जेक्ट था तो मैं न्यूज़

प्यार हुंदा फुलां तो मलूक सोनिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोनिया। दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी हूक।

0: चला अपने कार्यक्रम की तरफ। जब आप कॉलेज में पढ़ा थी तो आपके पास कौन कौन से विषय थे?
1: जी मैंने जिस तरह ग्रेजुएशन भी जनसंचार ते करी है, मास कम्युनिकेशन ते, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो मेरे पास यही सब्जेक्ट थे जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट्स थे मेरे पास मेन। और मैंने मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडी करी है, तो स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिविटी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ थी उनमें भी पार्टिसिपेट करा, जैसे डिबेट होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और कविता होगी, और जैसे मेरे पास कॉलेज में जैसे एनसीसी होती है, एनएसएस होती है, तो मैंने एनएसएस में भी पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें जैसे कैंप वगैरह लगाते तो मैं उनमें भी जाऊँ थी।
0: घर में अपना समय क्या करने में बितावा आप, जो आपके पास आपका खाली समय हुआ किस तरह बतावा?
1: जी जिस तरह मेरा खाली टाइम हो आज, जिस तरह पहला तो मैं अपने घर का काम करूँ, सारा झाड़ू पोछा अपना, सारा जितना भी काम हो घर का एक, तो उसके बाद जैसे फिर फ्री हो जा काम करने के बाद, तो जैसे मैं अपनी कोई स्टडी से रिलेटेड या मतलब जो मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूँ, मतलब कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी जो भी पढ़ना होगा उसके लिए वह करूँ। फिर उसके बाद मतलब मैं कुछ टाइम अपना एंटरटेनमेंट करने वास्ता जिस तरह सॉन्ग सुनूंगी या कोई मूवी देखूंगी, फनी मूवी, कोई मूवी वगैरह देख लिया तब भी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, तो मैं यूट्यूब से कोई रेसिपी देख लूँ नवी की, कुछ नया बनाया जा कुछ अलग सा, इस टाइप से मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ।
0: तो अपनों खाने में क्या क्या बनाना हुआ?
1: खाने में जिस तरह अपना रोटी सब्जी है तो सारा ही आवा, जैसे कोफ्ते या रायता या फिर कढ़ी चावल, मक्की की रोटी होती है वो भी बना लेती हूँ, गेहूं की रोटी तो चलो सभी बना लेते हैं, मतलब सारा काम जो भी रसोई का काम होता है सारा काम कर लेती हूँ मैं।
0: कभी कुछ आपने बनाना कुछ और चेहरे या बन गया कुछ और, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरी साथ मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, जैसे मैं ना मतलब सोच रही थी बहुत, मम्मी ने बोला अभी खाना बना लो आप, तो उस टाइम मैंने दाल बनानी थी, जैसे मूंगी मसरी की दाल हो अपनी, तो वो दाल बनानी थी मैंने, तो मूंगी की तो डाल ली, फिर उसके बाद मैंने उसमें डालनी थी मसरी की, लेकिन उड़द की डाल दी, वाइट उड़द हुआ जो, तो फिर मैंने देखा मैं कि इसका कलर तो वाइट है, डालनी तो मैंने संतरी ऑरेंज कलर की थी, तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने वो भी डाल दी, तो वो तीन टाइप की दाल होगी, तो फिर मैंने जैसे वो दाल बन गई तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, मैं कहा मेरे पते आज गलती होगी यार, मैंने यह दाल तीन टाइप की बना दी, तो कह रही चलो कोई नहीं, जब उन्होंने खाई तो उन्होंने अच्छी लगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि गलत किया यूं किया।
0: तो थारी कोई फेमस रेसिपी जो आज थारे घर के अनु बड़ी पसंद हो?
1: बिल्कुल हाँ, मतलब जो मेरे रिश्तेदार आवा या मतलब मेरे फैमिली वाले, उन्होंने मेरे खीर पूड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है, कि मतलब जैसे मेरी सिस्टर जिनकी शादी होगी है ना, तो वो जैसे बोलना तो कह रही भी नेहा इबम एरे मतलब घर तो खीर पूड़े बना दे अपने हाथ के, मनु वो बहुत पसंद आ। उसके साथ ही मतलब मैं और सारी चीजें जैसे गुलगुले हुआ अपने वो भी बना लूं, मतलब और भी सारी रेसिपी बना लूं, लेकिन जो मशहूर है जो मेरी रेसिपी वो खीर पूड़े ही है, तो मेरे रिश्तेदार सब या मेरे फैमिली वाले खीर पूड़े मेरे बहुत ही पसंद करा, तो खीर पूड़े बनाने वास्ता हमनू पहला जिस तरह खीर हुआ, तो खीर वास्ता दूध नू रखो गैस पर या चूल्हे पर जिस पर भी आप बना रहे, तो दूध नू उबाल, जब तक उसमें उबाल नहीं आंदा तो उसमें चावल ना पाओ, जैसे चावल मतलब एक तो चावल ओ मतलब लंबे वाले, लेकिन उसमें ना किणकियां वाले चावल यूज करने चाहिए, उसकी ज्यादा टेस्टी बना खीर, जब उसमें दूध में उबाल आ जाए तो उसमें जो किणकियां वाले चावल है उसनू पानी में अच्छे तरीके से धो का, थोड़ा टाइम पहला भगो कर रख दो उसनू ताकि वो अच्छे हो जाए मतलब गल जा, तो फिर उसनू चावल नू डाल दो खीर के अंदर, फिर उसनू पकाओ बिल्कुल, जब तक ना चावल और दूध आपस में मिल ना जा तब तक वो गैस बंद ना करो, हल्की आँच पर उसनू पकाते रहो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सका, काजू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, किशमिश वगैरह, और जो ये तो खीर बन गई जैसे हमारी, तो फिर पूड़े वास्ता आप क्या कर सका, जैसे आटा लो पहला गेहूं का आटा हुआ, तो गेहूं के आटे में आप जैसे चीनी की चाशनी या फिर आपके घर शक्कर की चाशनी या गुड़ उसकी चाशनी नो ऐड करो, तो आटा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा करड़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आटा होना चाहिए ताकि जैसे हम उसनू तवे पर गेरेंगे तो आराम से उठ सका, तो उसनू मिक्स करके आप उसमें काजू बादाम डाल सका, अगर आपकी इच्छा इलायची छोटी इलायची कूट का इलायची डाल सका, फिर उसनू आप तवे मतलब तवा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे पर बिल्कुल कुछ रह गया मतलब तवा साफ ना करेगा तो वो जो हमारे पूड़े वो तवे से उठने के नहीं है, वो वहीं चिपक जाएंगे, तो तवा अच्छे तरीके से धोना होना चाहिए, और फिर उसनू पूड़े नू हम जो आटे का गोला उसनू हम तवे पर गेर दें, और फिर उसनू सारे तवे पर फैलाने वास्ता जैसे हम तो यूज गाँव में तो जो जामण का पत्ता हुआ उसनू यूज करा, जामण के पत्ते दे उसनू सारे तवे पर फैला दे, फिर उसकी साइड में घी तेल जो भी आपके पास है वो डालना, फिर उसनू उठा लें हल्के दे, और फिर इस तरह हमारे पूड़े तैयार हो जाओ।
0: क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई और अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं पंजाबी सारे ही गाने सुनो, हिंदी पंजाबी, तो मतलब हरियाणवी एक सॉन्ग है वो भी मैंने बहुत ही अच्छा लगा, जिप्सी सॉन्ग है वो, हरियाणवी सॉन्ग।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता वास्ता थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सहजो बस।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारा आज का कार्यक्रम है घर परिवार। तो नेहा जी, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग करा और कितना जुड़ा है उससे?
1: जी बिल्कुल, आज का जो युवा वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा। आज के टाइम में मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो भी मटेरियल चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड, अपना सर्च करो और सारा मटेरियल मिल जा। और जिस तरह जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, जिस तरह मनु पूछना भी पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन हो एक रहते उनमें क्या खाना बने करा था कुछ भी, तो हम अगर सर्च करांगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और मतलब पता लग जाएगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का कैसा कैसा प्रयोग हो अतर क्या क्या उनमें दाल सब्जी बनावा थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और युवा बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहा। युवा भी लगा लो, आप बुजुर्ग भी लगा लो, सब इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज के टाइम।
0: तो जिस तरह हमारा आज का युवा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हमारी जिंदगी पर?
1: जी बिल्कुल, वही मतलब एक बात दीपक जी मैं आपनों कहना चाहूंगी भी हर चीज के दो पहलू हुआ, एक सही हुआ एक गलत हुआ, एक अच्छा हुआ एक बुरा हुआ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इसके भी दो पहलू हुआ, एक अच्छा एक बुरा, इसनों दो तरीके ते ही ले रहे हैं मतलब अच्छा और बुरा। तो जिस तरह यूज कर रहे इसनों मतलब हाँ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी आवा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आवा जो शायद जो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब युवा जैसे कोरोना के टाइम की मैं बात करूं, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल में बच्चे नु फोन दिए गए टैब 10वीं और 12वीं वाले नु, तो बच्चा ने मतलब वो सिर्फ पढ़ने वास्ते दिए गए थे, उसमें उस टाइम वो ऐप थी जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई थी उनकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन बच्चा ने उसमें उसके अंदर सोशल मीडिया और अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लिए, गाने सुनना या मतलब बच्चे उस चीज पर बहुत ज्यादा गलत की तरफ लेकर चले गए। मतलब दिए थे तो वह सही यूज वास्ते लेकिन उसमें गलत यूज कर लिया उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी हो रहा कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारे गांव के बच्चे हुआ या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो स्कूल में जहा और वे गेल फोन लेकर जहा, तो क्या है वो ले जाना अच्छा?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं या मेरे टाइम थे थोड़े टाइम की पहला, तो अगर मतलब बच्चे के पास अगर फोन मिल जाता स्कूल में तो उसने बहुत पनिशमेंट दिया थी, बहुत ज्यादा मतलब उसने घर उसके बताया जाता भी हाँ इसके पास फोन मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं देखूं, जैसे मैं ट्रैवल करूं बस में भी या मैं जैसे अपने कॉलेज टाइम में मैंने देखा, तो बच्चे फोन का यूज बहुत कर रहे और जो स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे वो भी फोन लेकर स्कूल में जा रहे हैं। ये फोन ले जाना स्कूल टाइम में, जैसे मैं बात बताऊं जैसे 10वीं 12वीं यही बच्चे का एक बेस हुआ जहां तो उसने कुछ करना या आगे बढ़ने की प्लानिंग करा भी हाँ, लेकिन वो बेस यहीं ते खराब हो जा, फोन में ध्यान दे रहे तो फोन में वही सोशल ऐप या फिर म्यूजिक तो उसी गेम खेल रहे हैं। बहुत सी गेम बैन भी करी गई, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे, गलत लग गए थे करने अपने साथ, तो इस टाइप से बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे फोन का यूज कर रहे तो माँ बाप नु भी देखना चाहिए भी मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा क्या नहीं। तो यह ड्यूटी मतलब बच्चे की नहीं एक माँ बाप की भी बना कि उसनु अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फोन कब तक यूज कर रहा क्या देख रहा, और एक लिमिट होनी चाहिए फोन देखने की, है ना। यूं नहीं कि बच्चा सवेर ते फोन देख रहा शाम तक देखता ही रहा देखता ही रहा, अगर उसनु फोन ना दे तो वो रोन लग जा कि मैं फोन नहीं दिया मैनु, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप नु भी थोड़ा रूल रेगुलेशन करने चाहिए बच्चे के प्रति।
0: तो हम भी एक युवा है और आज के युवा नु आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एक युवा हूँ तो मैं युवा होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो मानू चाहे लड़का चाहे लड़की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे बच्चे नु यहाँ भी दिक्कत ना हो यहाँ भी दिक्कत ना हो। तो जो हम बच्चे हैं तो हमारा भी एक फर्ज बना अपने माँ बाप के प्रति, बिना ने मानू जन्म दिया हमारा पालन पोषण करा, तो हम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा और जो उन्होंने मारते इच्छा है भी हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख का एक अच्छी जगह कहीं देखना चाहवे और जो भी उनकी इच्छा वो इच्छा पूरी कर सका।
0: नेहा जी, हम थारे ते एक और गाना सुनना चाहेंगे लेकिन कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लेंगे हम इजाजत। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मेरे ते यहाँ बुलाया। जय हिंद जय भारत। और एक मैं आपनु अपना फेवरेट गाना और सुनाना चाहूंगी, मस्त बना

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान थे नेहा धाकड़, एडिटिंग व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग सेजल पुंज, निर्देशन भारत सोपोरी।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: दिल तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ದೈಚು ಬೊಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: ಕುಚ್ಚೇ ದಿಯೇ

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: छोड़ मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: दिल तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: शीर्ष है रमेश मरहटा के काव्य संग्रह तैरते बादलों में एक शाम पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम श्री रमेश मरहटा जी को समर्पित कर रहे हैं। इसे पेश कर रहे हैं नरेश शर्मा।
1: रमेश मरहटा, एक एहसास, वो एहसास जिसे महसूस करते ही खूबसूरत फिजाओं में दिलकश मौसीकी अपने आगोश में समेट लेने को बेताब हो उठती है, लेकिन उनका आभा मंडल सौंधे सौंधे माहौल को अपनी गिरफ्त से बाहर ही नहीं आने देता। उनकी कलम की जादूगरी को एक शक्ल देने की कोशिश जहन को किसी और ही दुनिया की महक से सराबोर कर रही है। आइए महसूस करें तैरते बादलों में एक शाम। मौसीकी और शब्दों की कारीगरी का सफर अपने रेडियो हम सफर नरेश शर्मा के साथ।

0: मौसम है तुम्हारी यादों का, जब महीना था सावन का, तब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीगते भीगते भीगे थे कप कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कद एक आदम जिस्म का, लरजना लाजमी था, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी, वर मेरी पनाहों में जो तुम ठहरते पल भर के लिए, फिर से खिल उठता तुम्हारी यादों का मौसम, बीते मौसम की तरह।
1: वो जब याद आए।

और सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाएं, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए।

समय की इन तेज धाराओं से गुजरते गुजरते बीत गए कई युग। हर युग में समेटना चाहा तुम्हें अपनी बाहों में, छेड़ना भी चाहा तुम्हें अपने एहसास में, उतारना भी चाहा अपनी धड़कनों में, बसाना भी चाहा तुम्हें हम सफर बनाना चाहा, सजदों में बाकी उम्र बिताना चाहा। दुख की परिभाषा क्या है, तुम्हारे सुख की कल्पना करना चाहता था मगर ऐसा हो न सका, मगर ऐसा हो न सका।

तैरते बादल, बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता, जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते, रिश्तों को जिताते, मेरे जज्बात को अपनी पनाहों में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल कराते। मैं जानता हूं मैंने बेइंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमानों में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

तन्हा पत्थर। कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत, रास्ते वो थे पर बीच राह में हम सफर खो गए। पल भर में यहां मौसम बदलते गए और तर्क करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्हें से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे, बुझते रहे रोशनियों के चिराग। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तन्हा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल है।

ख्वाब की तरह। वो लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियां नाप लिया करते थे, इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे। इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते थे, हमें इनकी खामोशी का एहसास था और इनकी सिसकियां हमें महसूस हुआ करती थी, पर अब ये सब ख्वाब की तरह हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं।

उम्मीद कली, वो जो चाहते हैं बांटते रहे, सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। वह जीने का अंदाज जानता था, दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कुराहट लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था, शायद ये सोचकर कि एक दिन एक नन्ही कली खेलेगी उसके आंगन में ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखे, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय।

0: अरे कम्बक गाड़ी को भी यही पंक्चर हो रहा था।
1: हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह अरे वाह।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

अर्थ पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। मिटता रहा बनता रहा, कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उरका नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यही से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ। अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए हैं।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रोते हैं और अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, अपनी जानकारी भेजते हैं और साथ में अपने सुझाव भी भेजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:57। आज की ये भावभीनी मुलाकात भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिन को और बहुत रोशन कर दिया होगा। दोस्तों, हम हर दिन आपसे बात करते हैं इसी खास विषय पर जाने से पहले, और आज बात करते हैं एक बेहद जरूरी विषय, अपने वादों की कद्र करना ही एक भरोसेमंद इंसान की पहचान है। जीवन में भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है और ये भरोसा बनता है अपने दिए हुए वचन को निभाने से। आज के दौर में हम अक्सर छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं। किसी से किया वादा भूल जाना, समय पर ना पहुंचना या हां करके ना कह देना, लेकिन ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारी विश्वसनीयता को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का होता है, चाहे वो परिवार में हो, दोस्ती में हो या कार्य क्षेत्र में हो, वो बिना कुछ कहे भी लोगों का सम्मान और भरोसा जीत लेता है। वादा निभाने का कोई भी बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन ये आदत व्यक्ति के चरित्र की गहराई को दर्शाती है। उसके उलट बार बार वादे तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, आगे उस पर भरोसा करने से लोग कतराते हैं। दोस्तों, आइए हम सब ये संकल्प लें कि जो भी वचन दें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसे पूरा करें और पूरी निष्ठा से निभाएं। क्योंकि भरोसा कमाने में वर्षों लगते हैं, पर टूटने में एक पल भी देर नहीं लगती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस विषय पर जो हमने बात की आपसे, उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां जो आप सभी के नाम है। आज की पंक्तियां यूं है, जो निभाए अपना वादा मुश्किल में भी डटकर, जो निभाए अपना वादा मुश्किल में भी डटकर, वही पाता है सबका प्यार और सम्मान बनकर। वितस्ता भी तो अपने रास्ते से कभी नहीं मुकरती। वितस्ता भी तो अपने रास्ते से कभी नहीं मुकरती, यही सिखाती है भरोसा है सबसे बड़ा गहना संवर कर। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 7 अक्टूबर 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत और साथ में शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14, कल का कार्यक्रम रोशन पर तैयार किया गया है, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 पॉजिटिव स्टोरीज एपिसोड 8, कल की कड़ी है सकारात्मक सोच, और इस सोच को आपके लिए प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 9:30 कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 1, पेश करेंगे नैना, और 10 बजे होगा कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 2, अनिल कुमार यादव के साथ की गई बातचीत। ये हमारी आर्काइव से कार्यक्रम है, आप इसका पुनः प्रसारण कल सुन पाएंगे 10 बजे। 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये पुनः प्रसारण होगा 2 अक्टूबर 2026 को जो कार्यक्रम हमने चलाया था उसका पुनः प्रसारण कल आप दिन के 2 बजे सुनेंगे। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 1, पेश करेंगे आरजे किरणी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम हमारे ना हो सके।
ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि ये बातचीत आपके मन में भरोसे और वचन की कद्र करने की एक नई सोच जगा गई होगी। आप अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।